கொண்டா

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे. श्री तोलाम कल तीन दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे. विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है. श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है.
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है. 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है. हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026

0: बताया इसके चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. A report.
2: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking the 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. The engagement between the leaders is expected to provide fresh momentum to the robust bilateral relations and open new avenues for cooperation between India and Vietnam. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The Election Commission EC has issued a notification for the constitution of a new assembly in West Bengal following the completion of the electoral process in the state. The notification has been sent to the governor of West Bengal, formally marking the end of the election cycle and setting the stage for the formation of a new government. A senior EC official said the issuance of the notification is a key constitution.

0: यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से दो में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का। और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो एलईडी प्रदर्शन सौविध्यम अंतर्भवति। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोपि स्वीकृतः। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एतत् विधेयक

0: सुप्रभात AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की सैर पर और आपको देंगे वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार सर फिरोजी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर बिगिनिंग विद अ वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम बेसिकली आज सवेरे। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वी फर्स्ट स्टार्ट विद द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, देन मेट्रो सिटी अपडेट्स फॉलो एंड देन सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टुडे। टुडे इज 6th of May 2026. Me and Sir Firozi, we are pumped up and thrilled to begin our program. So without any further delay of even a split second, let's start with the headlines.
0: Bilkul Shagun. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट।
2: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The Election Commission of India has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the Assembly election results. The Election Commission of India asked the state administration and security agencies to take all necessary steps to prevent intimidation, reprisals or

0: conditions. Researchers said the algae matches to plastic surfaces and form biofilms, which triggers chemical and structural changes, and hence it can affect this. The microalgae can help in reducing the plastic waste.
1: और शगुन चेन्नई के बाद अब चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर. दिल्ली सरकार ने व्यवसायिक और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 व्यवसायिक शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,420 रुपए प्रति माह कर दिया गया है. श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा. दिल्ली सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी यानी वजन और माप सेक्टर में लाइसेंस व्यवस्था को सरल करते हुए अब इसे लाइफ टाइम वैधता दे दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी. दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है. श्री सिरसा ने कहा कि लाइसेंस देने से पहले भौतिक स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है. उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्वघोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे. श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता.
0: Now focusing on Bengaluru, where Karnataka government has signed an SOI with ISEG Foundation to prepare a comprehensive economic master plan for the Bengaluru metropolitan region. And this was done in the presence of Deputy Chief Minister. Spanning 8,000 square kilometer with a population of 16 million, the Bengaluru metropolitan region contributes 43% of Karnataka's GSDP and is a key hub for IT, aerospace, as well as biotech, though it faces challenges like congestion and rising costs. The plan to be completed by September will outline a data-driven vision for 2032 and 2037 with targeted interventions across technology, infrastructure, housing and sustainability. And this aligns with Niti Aayog's G-Hub initiative and aims to more than double Bengaluru's economy and improve livability. A steering committee led by the Chief Secretary will oversee implementation with ISEG Foundation as the knowledge partner.
1: और अब रुख कर रहे हैं मुंबई की ओर. मुंबई विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की है. प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे, जिसमें प्री एडमिशन पंजीकरण 21 मई को समाप्त होगा. छात्र 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों, 4 वर्षीय ऑनर्स या अनुसंधान कार्यक्रम और 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. बीए, बीकॉम और बीएससी के अलावा आईटी, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और मीडिया जैसी उभरते क्षेत्रों में भी प्रवेश लिया जा सकता है. पहली मेरिट सूची 26 मई को जारी की जाएगी. इसके बाद 30 मई और 4 जून को अगली सूचियां प्रकाशित की जाएंगी. प्रत्येक सूची के बाद दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान किया जाएगा. कक्षाएं 13 जून से शुरू होने की योजना है.
0: Heading to Hyderabad now, the Hyderabad administration has announced comprehensive safety measures for the outer ring road following a high-level coordination meeting held yesterday. Police Commissioner V.C. Sajjanar chaired the meeting with senior officials from the Transport Department and NHIA and other agencies. The ORR witnesses 2.8 lakh vehicles daily, with an average of 5 to 6 accidents occurring each day. The commission emphasized proactive prevention rather than reactive responses, the reactive response, setting a target of 0 accidents. Key measures include increased CCTV surveillance, enhanced vehicle fitness inspections and special counseling for traffic violators.
1: और शगुन, वैसे तो अब समय है कोलकाता के जो महानगर है हमारा, उसके बारे में जानकारी देने का. तो वहाँ काफ़ी सारी सरगर्मियाँ चल रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ. उसके अलावा हमारे पास आज कोलकाता के लिए मौसम का अपडेट है. कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आ सकता है. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

0: helped shape current views of dream, childhood, personality and therapy as well.
1: आज निशानेबाज गगन नारंग का जन्मदिन है. आज ही के दिन 1983 में चेन्नई में जन्मे भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया. 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गगन ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. 4 बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले और साथ ही कई वर्ल्ड कप खिताबों को अपने नाम करने वाले इस खिलाड़ी ने भारत को बहुत से मौकों पर गौरवान्वित किया. भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है.
0: एंड सैफिरोजी, लेट मी अलाउ मी टू शेयर दैट एज अ 2-year ओल्ड गगन नारंग एम्ड अ टॉय गन एट बलून्स इन अ शूटिंग स्टॉल इन Chennai's Marina Beach. So 27 years later, he was staring down the crosshairs at the historic Royal Artillery Barracks in London, shooting for a medal at the 2012 Olympics. He clinched bronze in the 10-meter air rifle event that day, and with it, India's first medal of that edition of the Games. A 4-time Olympian with multiple World Cup titles, the Chennai-born shooter has done much to make India proud on the global stage. Be it his exploits with the rifle or through his famed Gun for Glory Academy, which nurtured several prodigies, and the Indian shooter has played a key role in raising the standard of the sport in his country, in our country, over the years.
1: और आज भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्मदिन है. 1985 के दक्षिण फेडरेशन सैफ खेलों में काठमांडू में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और नया राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया था. सिंह को 1984 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया.
0: नाउ वी विल रिमेम्बर टेड वीम्स. The popular Midwestern band leader started his band in 1923 while attending the University of Pennsylvania, and in around 1925 he played in hotels and ballrooms. He started around with that in the city, and while also touring the Midwest.

आज लांस नायक आबिद खान की जयंती है, जो भारतीय सेना के उन जाबाज सैनिकों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में पाली नगर के मोहल्ला काजी सराय में 6 मई 1972 को जन्मे लांस नायक आबिद खान ने करगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया। उनके बलिदान पर आज भी पूरा देश गर्व करता है। 30 जून 1999 को आबिद खान जत्था रवाना हुआ। दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई सैनिक शहीद हो गए। एक गोली आबिद के पैर में भी आ लगी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़कर एक साथ 32 फायर झोंक दिए। आबिद के इस ताबड़तोड़ हमले में 17 पाक सैनिकों की लाशें भिज गई। इस बीच एक और गोली आबिद को आ लगी, जिससे ये वीर सपूत देश की रक्षा करता हुआ 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गया।

0: traditional forms of Indian drama. This includes folk theatre, Sanskrit drama. For contemporary settings, her first produced piece was The Middle One in 1966. In 1982, she served as chairperson of the National School of Drama, where she helped to develop youth arts for the country.
1: आज कश्मीरी कवि, अनुवादक और आलोचक अब्दुल रहमान राही की जयंती है. उन्हें उनकी कविता संग्रह नवाज़-ए-सबा के लिए साल 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वर्ष 2004 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया. और आज गोविंद मुनीस, भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की पुण्यतिथि है. हम सब ने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार ज़रूर देखी होगी, लेकिन उस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने, और वो फिल्म आज कल्ट फिल्म बन गई है. हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी फिल्म का एक डायलॉग.
2: कहाँ है? वहीं चल के बैठो ना.
3: नहीं, पहले एक बात बताओ.
2: का?
3: तुम नाराज हो हमसे?
2: नहीं तो, नाराज काहे होंगे?
3: तो फिर बात का है? आज इतनी बदली बदली का नजर आ रही हो. कितनी देर हुई हमें आके? पास आके बोलना बतियाना तो छोड़ो, देखा भी नहीं हमारी तरफ. इसलिए हमको लगा कि कल की बात से.
2: ऐसा काहे सोचते हो?
3: तो
2: का? सबके सामने तुम्हारे पास आके बैठ जाती, लाज नहीं आती हमको का?
3: पहले तो नहीं आती थी, कभी सबके सामने बात नहीं करती थी या कभी पास नहीं आती थी.
2: तब की बात और थी, अब ये सब नहीं होगा हमसे.
1: गोविंद मुनीस ने एक और अभिनेत्री को ब्रेक दिया था, जिनका नाम आज हिंदी सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं में शुमार किया जाता है, और वो हैं माधुरी दीक्षित, जिन्हें पहली बार गोविंद मुनीस ने फिल्म अबोध के लिए चुना था.
0: सो वी लिसन टू द डायलॉग फ्रॉम द मूवी. व्हाई डोंट वी गो अहेड एंड लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी एज़ वेल.

0: हसदी है।
1: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
2: With that, we thank you so much, listeners, for tuning in, and we hope you have a great day ahead.
1: Namaskar.
3: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
4: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा

0: हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
2: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार

0: कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जल मार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
1: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

மதனி தப மக மனித மரிக மபரிக.

சரி தப்ப மகரி சரி சரி தப்ப மகரி சரி.

0: அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது. தொடர்வது செய்திச் சுருக்கம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे. वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया. उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है. एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ आया है. इस वर्ष अप्रैल में वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति तो लैम की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है. आयोग ने बताया कि इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे. मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है. उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया. भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया. श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है.
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है. यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है. यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है. ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे.
1: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है. तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों की रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क बढ़ेगा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा. इसके साथ ही देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है. इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल कर सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी. हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मुहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है. IPL क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया. संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: நியூஸ் புலெட்டின்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। अमरीका और खाड़ी देशों ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना ईंधन भंडार बढ़ाने के लिए 7 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर के ईंधन सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री तो लैम का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति तो लैम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रम और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
3: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कीमतों में गिरावट के बाद भी व्यापक तेल बाजारों में अभी भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। अमरीका और खाड़ी देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में ईरान से जहाजों की आवाजाही में बाधा न डालने को कहा गया है। ऐसा न करने पर ईरान को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर जलमार्ग को नियंत्रित करने की कोशिश करके वैश्विक व्यापार को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। ये जलमार्ग दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

नए प्रस्ताव में बल प्रयोग की भाषा हटा ली गई है और मुख्य रूप से प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बीच अमरीका प्रस्ताव पर वीटो न करने के लिए चीन को मनाने का प्रयास कर रहा है। अगले सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात की संभावना है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक चुनावी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं और सिर्फ आखिरी चरण पार करना बाकी है। भारत और अमरीका ने 2 फरवरी को द्विपक्षीय व्यापार समझौते का ढांचा घोषित किया था और 7 फरवरी को इसका मसौदा जारी कर दिया गया था। पिछले महीने भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस समझौते पर चर्चा के लिए अमरीका गया था। समझौते के तहत भारत अमरीकी बाजारों में बेहतर पहुंच चाहता है। दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। समझौते के अनुसार अमरीका भारत पर लगाए गए शुल्क को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हुआ है। साथ ही रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय वस्तुओं पर लगे 25% शुल्क को हटा लिया गया है और बाकी शुल्क को भी 18% तक कम करने की योजना है। इस बीच भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $1 अरब 10 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वाशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने आगामी बजट प्रस्ताव में राष्ट्रीय ईंधन भंडार को बढ़ाने और एक स्थायी सरकारी स्वामित्व वाला ईंधन भंडार स्थापित करने के लिए $7 अरब 20 करोड़ के ईंधन सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि इस योजना में लगभग 1 अरब लीटर सरकारी स्वामित्व वाला ईंधन भंडारण शामिल है जो कम से कम 50 दिन की ईंधन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। इसका उद्देश्य देश को आपूर्ति में व्यवधान से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया अपने ईंधन का लगभग 80% आयात करता है और पश्चिम संघर्ष के दौरान उसे कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस भंडार के निर्माण में लगभग $2 अरब 11 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ईंधन कंपनियों को भी अपनी भंडारण क्षमता को 30 दिन से बढ़ाकर अब लगभग 40 दिन तक करना होगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा है। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हैं। ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को अब कुछ समय के लिए रोका जाएगा। अमरीका और खाड़ी देशों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक नया प्रस्ताव पेश किया है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना ईंधन भंडार बढ़ाने के लिए $7 अरब 20 करोड़ के ईंधन सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले वियतनाम के राष्ट्रपति का आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जारी होने से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किया जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भाजपा के पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को पुदुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों को कवर करने वाली रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। पंजाब और अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: புதிய பறவை படத்திற்காக பி. சுஷீலா பாடியுள்ள பாடல்.

சிட்டுக்குருவி முத்தம் கொடுத்து

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம்.
1: குப்பைகளை அகற்றும் போதும் தேவை கவனம். நெகிழிகளை தவிர்ப்போம், குப்பைகளை முறையாக கையாளுவோம், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கை கொடுப்போம், சூழல் வளம் காப்போம். தூய்மையான பாரதம் நமது கௌரவம்.
2: சிந்திக்க சில நொடிகள். கண்களை தானம் செய்வதன் மூலம் பார்வையற்ற இருவரின் வாழ்வில் ஒளியேற்ற முடியும். கண்களை தானம் செய்வோம், மற்றவர் வாழ்வில் ஒளியேற்றுவோம்.
0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
3: நமஸ்கார், आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी

श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी

इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहीउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्यागपत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शा

0: कहती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितने प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया

0: इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कलगम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियूर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
3: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
4: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय

0: प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு.

0: మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज. भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए. श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों का विस्तार करेंगे.
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे. कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो चुका है.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा. हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है. श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वियतनाम की राष्ट्रपति तो लाम की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और अटूट मित्रता को दर्शाती है. श्री पुरी ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते

संबंधों का परिचायक है। श्री लाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव

0: कड़गम टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरलम यूडीएफ गठबंधन सरकार गठन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह 2 के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने 40 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एआई वाले स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए हैं। इससे वे ध्वनि के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकेंगे। प्रत्येक चश्मे की कीमत लगभग 35,000 रुपए है। इन्हें निःशुल्क प्रदान किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर और निफ्टी 298 अंक बढ़कर 24,331 पर बंद हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Vietnam today inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system, and culture and tourism. The agreements were signed following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Thu Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both the leaders held wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two countries today decided to elevate bilateral ties to enhanced comprehensive strategic partnership.
2: Aaj hum apne sambandhon ko एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: Mr. Modi said India's agriculture, fisheries and animal products will also see smoother exports to Vietnam. He said to boost financial connectivity, today both sides have decided to enhance cooperation between the central banks. The Prime Minister said India's UPI and Vietnam's fast payment system are also going to be linked soon. He said both sides share a common outlook in the Indo-Pacific region as well. Mr. Modi said India is grateful to Vietnam for strongly condemning the Pahalgam terror attack and standing with the people of India in the fight against terrorism. President Thu Lam said that Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. The government has informed that domestic LPG distribution across the country is normal and no dry out has been reported at any LPG distributor. During the interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, informed that amidst the West Asia crisis, the government is making all-out efforts to ensure 100% supply of domestic LPG to the consumers for cooking and up to 70% to consumers of commercial cylinders. With regard to natural gas, the Joint Secretary informed that about 6,31,000 new PNG connections have been gasified and infrastructure has also been created for an additional 2.67 lakh connections.

0: She said so far 6,93 consumers are registered for PNG connections. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, has said that all Indian seafarers continue to remain safe in the region, with no incidents involving Indian-flagged vessels reported in the past 48 hours. India and the European Union have launched a 169 crore rupee joint initiative to strengthen EV battery recycling capacity under the India-EU Trade and Technology Council Working Group 2. Principal Scientific Advisor to the Government of India, Ajay Kumar Sood, said this launch is a pivotal moment in the India-EU strategic partnership. In Tamil Nadu, political parlays to form a new government under Tamaraga Vetri Karagam or TVK founder C. Joseph Vijay has intensified as his party is short of the majority figure of 118. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar reached Chennai from Kerala this afternoon. Interacting with media, he said that he had received an email stating that TVK, which has won 108 constituencies, has sought an appointment with him. Party had also requested 2 weeks to prove its majority in the letter. The governor added that after receiving the formal letter staking claim to form the government, he will take a decision within a day or two on inviting TVK to form the government. In another development, a section of elected MLAs from AIADMK wants the party leadership to support TVK. Congress, which has 5 MLAs, has decided to support TVK. And benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of de-escalation in West Asia. BSE Sensex climbed 941 points to close at 77,959. Nifty rose 298 points to settle at 24,331. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: நேயர்கள் கேட்கவிருப்பது தேநீர் நேரம். நிகழ்ச்சி தொடங்கும் முன்
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: or finance accounts as applicable. The last date and the detailed eligibility conditions available on the website. Kindly visit www.srfti.ac.in. The Government of India Press, Gandhi Nagar, Nasik, has invited applications for filling up one post of store supervisor grade 1 on deputation basis under the Non-Industrial Recruitment Rules 2023. Eligible officials from central government, including the Directorate of Printing, may apply. The application must reach the office within 60 days from the date of this advertisement's publication. Detailed eligibility conditions and information available at www.dop.nic.in. Gliders India Limited, a Government of India undertaking under the Ministry of Defence, Kanpur, has issued a vacancy notification for fixed-term engagement of professionals including Senior Manager, Finance and Accounts, Senior Manager, Industrial and Manager, Finance and Accounts. The annual CTC ranges from 5.4 lakh to 9 lakh rupees depending on the post, with multiple vacancies across different roles. Interested candidates must refer to the detailed eligibility and apply through the website, that is at www.glidersindia.in. The National Water Development Agency, NWDA, Ministry of Jal Shakti, Government of India, has extended the last date for submission of applications for the post of superintending engineer on deputation, including short-term contract. A total of two posts available in Level 12, with postings at Gwalior and Hyderabad. The revised last date has been extended by 45 days beyond 24/3/2026, and complete details available on the official website. Kindly visit www.nwda.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट समूह सी के 48 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 माह का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र तथा टाइपिंग दक्षता। प्रमाण पत्र अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 अप्रैल 2026 थी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 मई 2026 और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 19 मई 2026। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 7 पद तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुल 14 पद। योग्यता, अनुभव एवं पात्रता शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nia.gov.in। CSIR, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट असम, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ कुल 9 पद, ड्राइवर गैर तकनीकी 1 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कार्यकाल आधारित

ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास मैकेनिकल तथा केमिकल क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा उपलब्ध है। मैकेनिकल के लिए कुल पदों की संख्या 7 है जबकि केमिकल के लिए पदों की संख्या 6 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट munitionsindia.in/career अथवा ddpdoo.gov.in पर जाकर करियर टैब के अंतर्गत देखिए OF देहू रोड। रावी एवं व्यास जल अधिकरण कोर्ट मास्टर के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। नेशनल बाल भवन कोटला रोड दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सहायक लेखा अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन निदेशक नेशनल बाल भवन कोटला रोड नई दिल्ली 110002 को भेजे जाने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंजीनियरिंग विभाग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आमंत्रित कर रहा है अधीक्षण अभियंता सिविल के एक पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट chandigarh.gov.in/public-notice। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: शाम ढली तो यादों के दिए जल उठे, दिल के सन्नाटे में कुछ किस्से पल उठे।
1: यादें माजी आजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। जो बरसों से बुलाया जा रहा है वही क्यों याद आ रहा है फरहत? आई थिंक सो इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी रियली नेवर ह्यूमंस नेवर रियली फॉरगेट एनीथिंग। वी जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ यू नो कवर इट अप विद अदर थिंग्स, अपने आप को आप मसरूफ कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो आपका पुराना घर हो या आपके पेरेंट्स जो आपके साथ अब नहीं है या कोई बिछड़ा हुआ प्यार, यू रियली नेवर फॉरगेट एनीथिंग।
0: बिल्कुल सायरा, फिर तसव्वुर मुझे माजी में लिए जा रहा है, दर्दे दिल दर्दे जिगर ताज़ा हुआ जा रहा है। तो कुछ ऐसी ही होती है शाम जब हम कुछ याद करते हैं और माजी में चले जाते हैं तो जो यादों के पन्ने हैं वो अपने आप ही खुलने लगते हैं।
1: दैट्स राइट। लेकिन पता है फरहत, बहुत से राइटर्स दे एक्चुअली आर्ग्यू दैट देयर इज नथिंग लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बिकॉज ऑल दीज फेजेस ऑफ लाइफ वेदर यू नो वी आर दे ऑलवेज लिविंग विद अस इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार बैठे बैठे अगर चाय पी रही हैं आपको, कब जो है मम्मी के साथ चाय पीना याद आ जाए तो आप फौरन माजी में पहुंच जाती है। सो देयर इज नो यू कैन से द बॉर्डर्स आर वेरी फ्लूइड बिटवीन ऑल दीज थ्री फेजेस।
0: बिल्कुल सारा, क्योंकि यादों को समेटना बहुत ही मुश्किल होता है और वो कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पर आ जाती हैं।
1: दैट्स राइट। बट हम लोग परिक्रमा में माजी की नहीं अपने आज की बात करेंगे बिकॉज हम लोग लाते हैं ताज़ा तरीन खबरें। एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दिस इज द शो विच इज कॉल्ड परिक्रमा, तो हस्बे दस्तूर विल डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्ट stories our correspondents have from there. All of that in the next roughly half an hour. Why not start with the headlines first?
0: जी बिल्कुल सारा, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। तो सबसे पहले पीएम की खबर सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
1: दैट्स राइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड्स टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम तो लम इन न्यू दिल्ली। सेवरल एमओयूज एक्सचेंज्ड इन द फील्ड्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, मेडिकल प्रोडक्ट्स, रेगुलेशंस।
0: तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ

0: राजनीतिक गतिविधियां तेज।
1: असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा टेंडर्स रेजिग्नेशन स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट टू टेक प्लेस आफ्टर 11th ऑफ मे।
0: भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया।
1: IMD forecasts heavy rainfall over Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today.
0: और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। तो श्रोताओं आइए आगे बढ़ते हैं, मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा और अब बात डेडलाइन इंडिया की।
1: That's right, and in our segment Dateline India, we take a look at the developments that take place at the national or global level. And today we're going to talk about Mission for Cotton Productivity.
0: खैर हम सब सभी जानते हैं कि हमारा पसंदीदा कॉटन शर्ट हो या फिर कॉटन कुर्ती की यात्रा किसी शॉपिंग मॉल से शुरू नहीं होती, यहाँ तक कि किसी फैक्ट्री से भी नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत भारत की मिट्टी से होती है। और आज ये यात्रा कुछ इस तरह से बदल रही है जो दुनिया के भारत के कॉटन को देखने के नजरियों को पूरी तरह से बदल सकती है।
1: दैट्स राइट फरहत, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स द लाइव्स ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स, एक्सपोर्टर्स एंड ऑल ऑफ अस। The government of India has launched a 5,659 crore rupees mission for cotton productivity, which is aimed at making India self-reliant in cotton and globally competitive by 2030-31. But the question is, why cotton?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कपास केवल एक फसल ही नहीं है बल्कि ये भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। ये गांवों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती है। लेकिन हमारे श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत पहले से ही कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है तो फिर हमें इस तरह के किसी मिशन की ज़रूरत आखिर क्यों है।
1: Well, the reason lies in the challenges we've been facing, such as falling productivity, pest attacks, and concerns around quality. And rather than letting these issues grow, India is choosing to confront them with intent.
0: Saira, to zameeni star par kya badlega? Aaiye is tarah samajhte hain ki jo ekdam asli lage. Maharashtra ki ek kisan ki kalpana kijiye. Pehle kiton ke achanak hamle aur kam paidawar wale bijon ki wajah se uski aamdani anishchit rehti thi. Ab use zyada paidawar dene wale jalvayu ke hisab se mazboot aur kiton ka muqabla करने वाले बीज मिल रहे हैं।
1: Well, that actually means more output, better income and less stress for the farmer. And that's not all. To make farming smarter and not harder, techniques such as high density planting systems and better crop management, yields are set to improve noticeably. This goes far beyond the traditional way of farming.
0: और अब आइए खेतों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अतीत में चलते हैं और कपास प्रोसेसिंग यूनिट्स में गुणवत्ता का एक जैसा ना होना अक्सर वैश्विक मांग पर असर डालता है। आधुनिक जीनिंग फैक्ट्री और बेहतर टेस्टिंग सुविधाओं के साथ भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तैयार है।
1: And the real highlight Farhat of this story unfolds when Indian cotton earns its place as a global brand. That's the idea behind Kasturi Cotton Bharat, to create cotton that is premium, traceable and trusted internationally. That will not just be a cotton but a signature of quality.
0: जी सायरा, और अगर हम सोचें कि इन सबसे फायदा किसे होता है तो ये सिर्फ किसी एक समूह को नहीं होता है, हम आपको बता दें, बल्कि लगभग 32 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होने की उम्मीद है। और अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर बहुत व्यापक है। पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए या फिर कपड़ा उद्योगों की या फिर निर्यात बाजारों तक, साथ ही कपास के कचरे की रिसाइकलिंग और बांस और सन जैसे टिकाऊ रेशियो को बढ़ा हवा देने से पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। और इसीलिए ये कोई अंधाधुंध विकास नहीं है बल्कि ये असल में एक जिम्मेदार प्रगति है।
1: That's right Farhat, the mission will be implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Textiles, involving 10 institutes of Indian Council of Agricultural Research, 1 Institute of Council for Scientific and Industrial Research and 10 centers of All India Coordinated Research Project on Cotton operating in different state agricultural universities of major cotton growing states.
0: और अब इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं, इस योजना में क्या-क्या किया जाएगा। शुरुआत में 14 राज्यों के 140 से जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य कृषि विभाग और ICAR की मदद से टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा और 2000 जीनिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां इससे स्थापित की जाएंगी। अब यहाँ एक ऐसा जबरदस्त विजन है जिस पर गौर करना जरूरी है। भारत का लक्ष्य कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है। और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और उत्पादन के 498 लाख गांठों तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कपास के क्षेत्र में सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्पष्ट कदम है।
1: Well, Farhat, the mission also aligns with the 5F vision. And if you're thinking, listeners, what is the

0: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर. और
1: उससे पहले हम बता दें कि फरहत, ये जो जितने भी पद अवार्ड्स हैं, व्हेन वी लिसन टू देम वी रियली गेट इंस्पायर्ड.
0: समय बताना बहुत ही जरूरी है, मैं भूल गई थी कि समय जो है ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमसे जुड़ सके.
1: सो इन ऑर्डर टू लिसन टू द फुल कॉन्वर्सेशन, प्लीज ट्यून इन टू 100.1 आकाशवाणी गोल टुडे. एंड लाइक यू नो एट 5:10 PM, दैट इज 10 मिनट्स आफ्टर परिक्रमा. एंड यू कैन लिसन टू इट ऑन न्यूज ऑन AR app as well, also on our YouTube channel News on AR Official. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
0: तो चलिए, सारा ने कार्यक्रम का समय तो बता दिया है और अब रुक कर लेते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं का, जहां वो जानकारी देंगे उनके पास क्या है विशेष.
1: एंड वी आर स्टार्टिंग अप परिक्रमा जर्नी विद माय फेवरेट स्टेट फरहत. वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी फ्रॉम गोवा. वेल, टर्निंग रूरल यूथ इनटू स्किल्ड प्रोफेशनल्स वाज द फोकस ऑफ अ मेजर रीजनल समिट इन पणजी, विद स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू रिफाइन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. वी हैव अ रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट पुश फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट.
2: A two-day regional workshop concluded yesterday in Goa, focusing on the second phase of two major national initiatives, the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana and Rural Self-Employment Training Institute. These programs, known as DDU-GKY and RACTI, are designed to bridge the gap between rural talent and the modern job market. DDU-GKY acts as a placement-linked training scheme where youth learn specific trades for corporate jobs, while RACTI focuses on creating entrepreneurs through district level training centers. Representatives from 8 states, including Uttar Pradesh and Bihar, met to coordinate action plans and improve training quality. Rajya Sabha member Sadanand Tanawade emphasized that strong cooperation between government and the industry is vital for rural development. Officials also reviewed the Management Information System, or MIS, which is the digital platform used to track student progress and financial management. The gathering aimed to ensure that rural training programs align with the

0: நேஷனல் கோல் ஆஃப் டெவலப் இந்தியா பை 2047 ஃபார் பரிக்ரமா நிகில் உபாத்யாய் ஆகாஷவாணி நியூஸ் பட்ஜி.
1: चलिए सर अब आपको चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं.
2: अच्छा घर चलिए. कौन से किस राज्य के चिड़ियाघर
1: जी
2: जाएंगे?
1: हम पटना जा रहे हैं सीधा. राजधानी पटना के चिड़ियाघर में अब पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी और यहां जल्द ही आगंतुकों को ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल देखने को मिलेगी. तो क्या है ये पहल, आइए जानते हैं.
3: पटना चिड़ियाघर अब पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनने जा रहा है. यहाँ जल्द ही कदमों के नीचे ही नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर भी रास्ते होंगे जहाँ इंसान प्रकृति के और करीब होगा. पटना चिड़ियाघर के निदेशक हेमंत पाटिल कहते हैं कि पर्यटक यहाँ जल्द ही टॉय ट्रेन और ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल का आनंद उठा सकेंगे. वे बताते हैं कि वॉकवे के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है.
4: देखिये पटना जो है देश का इकलौता ऐसा जो है जहाँ पे 80% से ज्यादा हरियाली उपलब्ध है. तो ये तो हम लोग जैसे नीचे घूमते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है. बट जो हम लोग जैसे देखेंगे गेट संख्या 1 से 2 के बीच में कुसुम का एक अच्छा से लाइन लगा हुआ है, उसमें जो पेड़ के ऊपर की जो एक इकोसिस्टम रहती है वो अगर बच्चों को देखनी है तो उसके लिए ट्री टॉप वॉक जो है एक अनोखा पहल होगा. इसके ऊपर वर्तमान हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय और प्रधान मुख्य वन संरक्षक हॉफ महोदय एवं शासी निकाय के जो भी सदस्य थे इनके ऊपर गहन चर्चा हुई और इसी के मद्देनजर ट्री टॉप वॉक का निर्माण का एक प्रस्ताव है ताकि बच्चों को ये अलग एहसास महसूस हो कि एक ट्री के टॉप में क्या इकोसिस्टम रहती है, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनको वो नजदीक से देख सके.
3: साल 1973 में स्थापित पटना चिड़ियाघर वर्तमान में 800 से ज्यादा पशु पक्षियों का घर है जहां हर उड़ान और पच्चाप एक नई कविता रचते हैं. साथ ही नेचर लाइब्रेरी की खामोशी, 3D थिएटर की रोशनी और जल उद्यान की ठंडक मिलकर इस चिड़ियाघर में अनुभवों का एक खूबसूरत संसार बनाते हैं. उम्मीद है कि ये नए कदम पटना जू में सिर्फ सुविधाओं में इजाफा ही नहीं करेंगे बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक नया रिश्ता भी गढ़ेंगे. सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना.
2: So Farhat, the tree top walkway in Patna Zoo, it really sounds intriguing. So, but let's move on to another place. And now we are heading up north to Ladakh. Well, in Leh district of Union Territory of Ladakh, vibrant cultural evening yesterday highlighted the fourth day of Sacred Relics Exposition. The cultural evenings are being organized at the main market in Leh, drawing audiences across sections of the society. Let's hear more from our correspondent.
5: The fourth day of the sacred exposition of the holy relics of Lord Buddha in the Union Territory of Ladakh was marked by a vibrant cultural evening showcasing a diverse range of performances from across the country along with local artistic traditions. The evening is being organized by the administration of UT Ladakh in collaboration with the Ministry of Culture, Government of India and the North Zone Cultural Center, Patiala, and is scheduled to continue till May 13, 2026. The last evening commenced with a welcome and the introductory address followed by a presentation of Larna highlighting aspects of Ladakh's cultural heritage. The program then featured a performance by Gyamiru artists presenting the traditional Chapshkyang song and dance. Cultural troops from Orissa and Gujarat presented a series of performances reflecting the rich diversity of regional dance and music traditions. The performances were interspersed through the evening, ensuring a balanced and engaging program flow. The LACS cultural group presented the Spau dance, adding a distinct local cultural element to the evening. A Ladakhi folk song performances by local artists were among the highlights, receiving an appreciative response from the audience. The cultural evenings being held daily as part of the exposition continue to attract participation from residents, visitors, tourists and officials, reflecting the blend of spiritual significance and cultural outreach associated with the Sacred Relics Exposition. For Parikrama, this is Rigzanamo from लद्दाख.
1: और सारा अब सरकारी अस्पतालों की बात कर लेते हैं. वहां पर रक्तदान शिविर का जो है वो महत्व बताया गया है और इसके अलावा डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जा रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की शुरुआत करने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है. कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय ऊर्जा और आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ये जानकारी दी और उन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है। रक्तदान इसी भावना का सर्वोच्च उदाहरण है और जब कोई व्यक्ति अपने रक्त का दान करता है तो वो न केवल एक जीवन को बचाता है बल्कि उस परिवार को भी खुशियों से भर देता है जो अपने प्रियजन को खोने के कगार पर होता है। और उन्होंने कहा है कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच

0: के हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो या फिर कैंसर से।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के जीवन का सहारा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है, चाहे वह किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो, कैंसर से जूझ रहा मरीज, सर्जरी से गुजर रहा कोई व्यक्ति हो या फिर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों से पीड़ित बच्चे, इन सभी के लिए रक्त जीवन का आधार है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 2 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है और अस्पताल में भर्ती हर 10 में से 1 मरीज को खून की जरूरत होती है। ये एक गंभीर स्थिति है जो हम सभी से सामूहिक प्रयास की मांग करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 154 रक्त केंद्र हैं। सरकार ने पिछले वर्ष तय लक्ष्य 3,30,000 यूनिट रक्त से बढ़कर 4,50,000 यूनिट से भी अधिक रक्त एकत्रित किया है। केंद्र सरकार से हरियाणा को वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक रक्तदान हेतु रक्तदान में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार भी मिला है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
2: And another very good thing happened in the field of healthcare, especially in Delhi. Well, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, distributed artificial intelligence-enabled smart vision glasses to 40 visually impaired individuals, enabling them to interpret their surroundings through sound. आप देखिए AI को अगर हम लोग जो है लोग उससे कुछ लोग डर भी रहे हैं, but AI is a revolution, I would say. And अगर उसके जो है बहुत ही सूझबूझ से अच्छी तरह उसको यूज़ किया जाए, so it can actually provide a lot of solutions that we can't even think of. Imagine आप जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें आपको जो है AI enabled sounds भी आ रही हैं. So I think that's so helpful for the visually impaired. And each glass that cost around 35,000 rupees, it was provided free of cost under the CSR initiative at a function that was held at Dr. RP Center of Ophthalmic Sciences. Let's hear more from our correspondent.
3: These AI-enabled glasses convert visual information into spoken term and also identify objects, recognize faces, detect obstacles, and assist with navigation. The device helps visually impaired persons manage their daily tasks independently, from identifying currency notes to locating doorways. Dr. Praveen Vasisht, in charge community of ophthalmology, said that AIIMS has planned to distribute around 1,700 such AI-enabled glasses to the persons with low visibility already identified from Delhi NCR schools. He said, such glasses will help them know about their surroundings so that they can lead a normal life. Sharing his experience with Akashvani News, a beneficiary hailed AIIMS initiative for providing the smart vision glasses, saying that they will be helpful for them in their daily life.
4: Smart vision glasses se jo mujhe face karni padi problem 9 to 12th mein, wo mere aane wale saathiyon ko face nahi karni padegi. Kyunki smart vision glasses ke sahayata se wo board par kya likh chuke hain teacher, क्या है ब्लैक बोर्ड पर, क्या क्वेश्चंस है, क्या टॉपिक्स है, वो खुद ही देख करके समझ सकते हैं। अब जैसे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे किताबें होती हैं जो कि ऑडियो में और ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हम प्रिंट बुक लेकर के अपने दोस्त की भी हम खुद स्मार्ट विजन प्रीमियम से पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट विजन ग्लासेस हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होता है और हम चश्मे के थ्रू ही करेंसी निकाल करके जो स्मार्ट विजन ग्लास से हम करेंसी को देख सकते हैं।
3: Earlier, AIIMS had distributed 53 smart vision glasses to such individuals and these smart glasses will help them perform their daily routine tasks easily. With Anand Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
0: और सारा आप खेलों में आईपीएल क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया।
2: In business news, benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of de-escalation in West Asia. BSE Sensex climbed 941 points to close at 77,959. NSE Nifty rose 298 points to settle at 24,331.
0: और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं आजादी के सफर पर।
5: आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं। उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था। वो असम के जागीरदार के छोटे भाई थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश

0: भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए।
1: विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया। नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई। इस वीर शहीद को नमन।
0: आज हम
2: और श्रोता अब हम बढ़ते अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो सारा सबसे पहले हम किसे याद कर रहे हैं?
3: वेल, वी आर रिमेम्बरिंग शिव कुमार बटालवे टुडे एंड वी ऑल नो दैट ही इज अ पोएट, अ राइटर एंड अ ग्रेट रोमांटिक एट हार्ट।
2: जी बिल्कुल, मोहब्बत जो है उनके लिए सब कुछ थी। ये एक ऐसे शायर और कवि थे जो एक छोटी सी जिंदगी में इतना नाम बना गए जो आज भारत में हर नौजवान के सीनों में धड़कता है। वो कहते थे, गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिहदा नाम मोहब्बत है।
3: That's right. He was the youngest recipient of the Sahitya Academy Award and he gave a beautiful interview. We have a snippet from it. Let's listen to it.
4: और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया हूं।
5: ठेस लगी हो आपको?
4: काहे की ठेस?
5: क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है, कविता लिखी है, नाउम्मीद होकर, दुखी होकर, कभी जिंदगी प्यार में दुख पाया।
4: इंदिरा जी, ऐसा नहीं था ना, तो मोहब्बत का फर्क रहा। हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया।
5: क्यों?
4: ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का। जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है, पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है।
5: तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है?
4: वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से, कभी बालों से किसी के, किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से।
5: तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो।
4: लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है।
5: एक आध हमको भी सुनाइए।
4: जरूर, गा के सुनाओ।
5: गा के सुनाइए। वाह क्या बात,
4: मंजूर है तो मैं किताब ले लूं?
5: जरूर लीजिए।
4: तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा कि पुत

0: और सारा इनके गीत हिंदी में ना आकर भी बहुत लोकप्रिय हो गए.
1: That's right, and as I had mentioned earlier for her, that he was the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award in the year 1967 for his magnum opus, The Verse Play Luna.
0: और अब आइए आगे बढ़ते हैं. भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की आज पुण्यतिथि है. हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन इस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने, और वो फिल्म आज काफी हिट भी साबित हुई है. और इसके अलावा गोविंद मुनीस की फिल्म आंसू बन गए फूल से जो है एक प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में, आइए सुनते हैं.

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை அஸ்வத் நாராயணன் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். கும்பகோணம் எம்ஆர் கோபிநாத் அவர்கள் வயலின், திருவனந்தபுரம் ஆர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் மிருதங்கம், மடிப்பாக்கம் ஏ முரளி அவர்கள் கட்டம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कशगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीकी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक

साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में

0: घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3रे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட்.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்ட் 100.1.
1: நிகழ்ச்சி நிரல். இந்த அலைவரிசையில் இன்றும் நாளையும் இடம்பெற உள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. அறிவிப்பினை தொடர்ந்து திரையிசை. 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல். 7:10 இளைய பாரதம் ரெமெம்பரிங் டாகோஸ் ரேடியன்ஸ் உரை வழங்குபவர் ஆரோஹி சௌத்ரி. லாஃபர் நேச்சர்ஸ் பெஸ்ட் மெடிசன் உரை வழங்குபவர் சகீனா டாகிர். தொடர்ந்து பீட் த கிளாக் ஓன் யுவர் சக்சஸ் கேத்தரின் ஜோபி வழங்கும் உரை இடம்பெறும். 7:50, 8:10 திரைகாணம். 9:15 ஸ்பாட்லைட். 9:30 சர்ச்சா கா விஷயை. 10:10 விஸ்வதர்பன். 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ். 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக். 11:10 திரைகாணம்.

0: समारोहः प्रायः मई मासस्य एकादश दिनाङ्कानन्तरं भविष्यति। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम बिहार केरलम तमिलनाडु पुडुचेरी राज्येषु अतिवृष्टेः अनुमानं प्रकटितम्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये अंकीय प्रौद्योगिकी दुर्लभ मृदा भेषज उत्पाद विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा अंकीय दान प्रणाली सहैव संस्कृति पर्यटन क्षेत्रेषु अनेकानि संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम महोदयेन सह सम्भाषणानन्तरं सन्धिः अजायत। चर्चावधौ उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषु विषयेषु अथ च परस्परहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु विस्तृतां चर्चां कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सन्देशे अकथयत् यत् वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः सन् एकमासाभ्यन्तरे एव राष्ट्रपति तो लाम महोदयस्य इयं प्रथमा भारतयात्रा सूचयति यत् सः भारत वियतनाम सम्बन्धाय प्राथमिकतां ददाति।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: सः अवोचत् यत् न्यासं जीवन्तं स्थापयितुं भारतं वियतनाम देशस्य प्राचीन चम्पा सभ्यतायाः मायसन अथ च न्यान ताओ मन्दिराणां जीर्णोद्धारं कुर्वत् अस्ति।
1: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
0: वित्तीय संपर्कं वर्धयितुम् अद्य उभाभ्यां देशाभ्यां केन्द्रीय वित्त कोषयोः मध्ये सहयोगः सुदृढः।

अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असमे मेघालये पूर्व राजस्थाने हरियाणायां चंडीगढ़े सहैव दिल्ली नगरे कतिपयेषु स्थानेषु विद्युत्पातेन सह झंझावातस्य तीव्र वायोः च संभावना वर्तते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स दलयोर्मध्ये क्रीडा भविष्यति। सायं सार्धसप्तवादने क्रीडा आरप्स्यते। ह्यः दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं अष्टस्तोभैः पराजितम्। पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य राष्ट्रपतिना तो लाम इत्यमुना सह संभाषणं विहितवान्। टीवीके प्रमुखेन विजयेन तमिलनाडोः राज्यपालेन सह कृतं मेलनम्। असमराज्यस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा अद्य स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान् इति वार्ताः।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, इस विषय वस्तु की विवेचना करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका करजोर अभिनंदन।
2: जी थैंक यू प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज राइज ओवर 1%, सेंसेक्स गेन्स ओवर 900 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,300। इंडिया एंड वियतनाम एलिवेट टाइज टू एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेवरल एमओयूज लिंक्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में उछाल, सेंसेक्स 900 अंक से अधिक उछला, वहीं निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ। भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को और बेहतर तथा नीतिगत साझेदारी तक पहुंचाया। रेयर अर्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत अलग अलग क्षेत्रों में कई मसौदे पर हस्ताक्षर किया और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: And before we take the main stories in detail, let's have a look at the disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, अब जानते हैं कि आज पूरे दिन के दरमियान कारोबार में कैसी गतिविधियां रही। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच आज बाजार का रुझान सकारात्मक रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर स्थिर हुआ। उधर विस्तृत शेयर बाजार ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों ही सूचकांकों में लगभग 2% का उछाल आया। इससे पहले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते बाजार की शुरुआत अच्छी हुई। दोपहर के सत्र में सूचकांक थोड़े समय के लिए नकारात्मक जरूर रहे, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कारण बाद में उनमें तेजी से उछाल आया।
0: Benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of a de-escalation in West Asia. Sensex climbed 941 points to close at 77,959, while Nifty rose by 298 points to settle at 24,000.

0: 3.31. However, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. Mid-cap 100 soared nearly 1.8% and the small-cap 100 jumped more than 1.9%. Earlier, the market opened with a gap up amid positive global cues, although the indices briefly turned negative during the afternoon session. They later rebounded sharply, supported by easing crude oil prices.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो लगभग 6.5%, ट्रेंट लगभग 4% और एशियन पेंट्स के शेयर लगभग 3.5% बढ़े। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम रिलायंस लगभग 2%, वहीं लार्सन एंड टूब्रो और पावर ग्रिड लगभग 1% से अधिक गिरे।
0: In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 21 out of the 25 sectors edged upward. In the top gainers, telecommunications rose over 2.9%, services climbed 2.9%, and PSU banks added 2.8%. Among the top losers, power dropped almost 0.5%, utilities lost 0.2%, and FMCG as well as energy dipped more than 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,862 companies advanced, 1,365 companies declined, and 167 companies remained unchanged.
1: और अब जानते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 68 पैसे मजबूत होकर 94.61 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 97.73 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, आज जो हमने बढ़त देखी है, हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 1.25% के आसपास की हमने बढ़त देखी, तो इसको आप कैसे रेखांकित करते हैं?
2: देखिए प्राची, जो डेवलपमेंट्स हो रही है
1: जी,
2: चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, तो दोनों ही फेवरेबल हैं। सबसे पहले तो जो यूएस और ईरान के बीच में एक डीएस्केलेशन, जैसे अर्जुन ने बताया कि होने जा रहा है
1: जी,
2: जिसका कि भरपूर फायदा हो सकता है, लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल है। पहले भी हमने बहुत बार ऐसी संभावनाएं देखी हैं, उसके बाद में वो बातचीत नहीं हो पाई
1: जी,
2: तो उसके बाद वापस से मार्केट्स वॉलेटाइल हुई,
1: तनाव
2: का माहौल वापस हुआ
1: जी।
2: लेकिन आज की जो वजह है उसकी मैं ये समझता हूँ कि अब मार्केट्स को काफ़ी हद तक पता चल गया है कि बहुत ही वॉलेटिलिटी रह सकती है। मार्केट्स आपने सब्साइडेड भी देखी होंगे कि जब कोई एक्शन ही नहीं हुआ,
1: जबकि अभी भी कुछ तय नहीं है,
2: अभी भी तय नहीं,
1: लेकिन फिर भी एक सकारात्मक रुझान की तरफ जो झुका है।
2: सबसे बड़ा कारण ये था कि जो कल एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा बोनांजा सरकार ने अनाउंस किया
1: जी,
2: 2.55 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो ईएलजीसी स्कीम जो है, इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होता है, वो सरकार ने अनाउंस किया, दैट दिस इज कॉल्ड 5.0। इससे पहले भी सरकार काफी बार अनाउंस कर चुकी है, कोरोना के टाइम पे किया सपोर्ट करने के लिए। तो इसका एक बहुत बड़ा जो फायदा है बिजनेसेस को, क्योंकि अब आप देखिए कि बिजनेसेस आर नाउ मोर देन 95% इन दी एमएसएमई कैटेगरी, एमएसएमईज में ही ज़्यादातर बिजनेसेस हैं। तो इतने बड़ी तगाद में ये जो अनाउंसमेंट आई है, इसका एक तो जो इम्पैक्ट आ रहा था वेस्ट एशिया की वजह से, जो वेस्ट एशिया की वजह से एक इम्पैक्ट था कि उनके जो प्राइस कॉस्ट मार्जिनस के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है और उनकी जो वर्किंग कैपिटल है बहुत इम्पैक्टेड है, और उनका जो आगे इन्वेंट्रीज हैं वो पाइल अप हो रही हैं क्योंकि वो सामान जो है स्टक अप हो गया है। तो ये बहुत सारी चिंताएं बनी हुई थी जिसको सरकार ने इतना बड़ा बोनेंजा देके एक बहुत ही भरपूर तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है, और उसकी बहुत सराहना भी हुई है इंडस्ट्री की तरफ से। मैं अपनी इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम की बात करूँगा कि हमने बहुत सराहना की है, हमने इसको एक भरपूर प्रयत्न बताया है
1: जी, एविएशन में भी एक अच्छा हमें
2: एविएशन में जो ये 2.55 लाख करोड़ का जो हमने बात की है, इसमें से 5,000 करोड़ जो है वो स्पेसिफिकली एविएशन के लिए है, जैसे बाकी का जो अमाउंट है जो एमएसएमईज नॉन एमएसएमईज, एमएसएमईज के लिए उन्होंने 5 साल का जो निर्धारित समय दिया है जिसमें 1 साल का मॉरेटोरियम रहेगा, और एविएशन के लिए 7 साल का समय दिया है जिसमें 2 साल का मॉरेटोरियम रहेगा।
0: डॉक्टर शर्मा, लेट्स आल्सो लुक एट द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स। 529 कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5,015 कंपनीज, एंड व्हाट वी आर सीइंग

0: is that the revenue year-on-year has gone up by 10%. The net profitability has gone up by 15.4%. So clearly, the fundamentals in terms of valuation is quite high as well, and that's leading to a buying interest in the markets. We saw that the DIIs are once again the net buyers in the market. But what we also saw today is telecom go up. There seems to be a relief announced for specific companies in the telecom who are debt-ridden, 27% reduction in the AGR liability. And tell us about this 5G monetization that the telecom industry can take advantage of.
1: Yes, Arjun, as you rightly said that this is another factor which is supporting the market right now, because we discussed the de-escalation in the global market between US and Iran, and thereafter some settlement, peace settlement between US and Iran, and this bonanza given by the government for the support of MSMEs and the aviation sector. This 5G again is a supportive factor for the markets that is coming in a big way for the telecom companies, and I believe this will push up the profitability and the overall trajectory of the telecom companies in the system. And I believe this is a great development and support the overall economic scenario.
2: डॉक्टर शर्मा, अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें, सेक्टर्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो निवेशकों के लिए और श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि आज की तारीख में जब हम हाईज भी देख रहे हैं, लोज भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो आपकी आपकी नज़र में, आपकी राय में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं चुनिंदा, जो कि हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं, मैं और अर्जुन भी जानना चाहते हैं कि जहाँ निवेश किया जाए?
1: देखिए, जो अभी हमने देखा कि एयरलाइन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट
2: जी
1: था, स्टॉक्स भी काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे, तो इस बोनेंजा के साथ मैं समझता हूँ कि उसमें भरपूर एक अच्छा सेक्टर है, प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और आने वाले टाइम में जो जैसे मैं पहले बार बार ही बताता हूँ कि इंडिया का हर एक सेक्टर ही बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, फिर भी जो खास करके जो मैं फोकस में लेके आना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एक बहुत ही जिसको हम सदाबहार एक सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती रहेगी, नॉट ओनली फॉर ईयर और डेकेड, दिस विल कंटिन्यू फॉर मेनी मेनी डेकेड्स। लगभग कोई 2047 तक तो अपना लक्ष्य है कि हम विकसित भारत बनना है, तब तक तो कोई इसमें कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि इसके ऊपर कुछ ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी। सेकंड इज द बैंकिंग, कि जब अपना हम इंफ्रा डेवलप करते हैं, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, अभी हमारा साइज इकोनॉमी का $4 ट्रिलियन है, आने वाले टाइम में जो ज़्यादातर जो आंकड़े हैं जो हमने देखा है, जो स्टेटिस्टिक्स है वो बताता है कि 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर का मीडियन जो एस्टिमेट है, बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट्स आए हैं, किसी का 45 तक भी आया है, तो लेकिन मीडियन वैल्यू जो है वो लगभग कोई 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर के बीच बनती है। तो आप देखिए कि यहाँ से 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन तक अगर हम जाते हैं या 30 भी जाते हैं, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एस्टिमेट करिए कि उसे जो बैंकिंग की कितनी ज़रूरत होगी, और जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत होगी, और जिससे कि ओवरऑल डिमांड ट्राजेक्ट्री। मैं देखता हूँ कि हमने बहुत सारे FTA किए हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी,
2: जी
1: लेकिन साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितनी FTA से अपॉर्चुनिटी है, उतनी हमारी डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारे पास जो FTAs की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास अपने कंट्री में भी है। तो हमें डबल डिमांड, जो इधर का डिमांड भी पूरा करना और जो उधर विदेशों का डिमांड पूरा करना, तो हमारे पास एक ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं, जो सेक्टोरल कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं, जो होने लाजमी है, तभी तो हम अपना डोमेस्टिक डिमांड और ग्लोबल डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। तो जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स की आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि एवरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज अ प्रॉमिसिंग सेक्टर।
0: सर, PSU बैंक्स वेंट अप बाय 2.8%, व्हाट इज इट इन देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड अदर मेट्रिक्स लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट हैज लीडिंग टू वैल्यूएशन, और इज इट जस्ट एन अप ट्रेंड?
1: अर्जुन, एज आई अर्लियर सेड दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम 30-35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, सो नाउ द एस्टिमेट्स, ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स बाय मूडी और द अदर ऑर्गेनाइजेशंस और अवर डोमेस्टिक एस्टिमेट्स,

0: up, then the demand for dollar increases and the dollar becomes strong. When the prices are decelerating, then the demand for dollar recedes and the dollar also starts decelerating. That is the one-to-one correlation between these two factors in the recent days.
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, और भी खबरों की विवेचना करने के लिए आपके पास हम लौटेंगे, मगर श्रोताओं उससे पहले जानिए कि और क्या खबरें हैं। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर एक तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। मूडीज ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक व्यवधानों से पहले तय किए गए मुद्रास्फीति के अनुमानित लक्ष्य सहित भारत के स्पष्ट और पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति ढांचे से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और बाहरी तनावों से सफलतापूर्वक लड़ने में सहायता मिलती है। डॉक्टर शर्मा, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें, आप बताएं कि इस मुद्दे की क्या गंभीरता है भारत के लिए।
0: देखिए, इससे भारत एक सुदृढ़ इकोनॉमी है
1: जी,
0: और मैं ये कहूँगा कि पोस्ट कोविड ईयर्स में पर्टिकुलरली भारत की रेजिलियंस बहुत इंक्रीज हुई है। अगर हम पीछे 5 वित्त वर्षों का विश्लेषण करें ग्रोथ का, तो हमारी ग्रोथ जो है वो ऑन एन एवरेज 7.5% रही
1: जी।
0: पहले हम 9.7 पे ग्रो किए, फिर 8.2 पे किए, फिर 7.6 पे किए, और लास्ट ईयर भी हम जो था ग्रोथ रेट अच्छा रहा, 7.1 पे हम ग्रो किए अकॉर्डिंग टू द न्यू सीरीज।
1: सतत बढ़ोतरी देखी हमने,
0: बढ़ोतरी देखी। और दूसरा कारण होता है रेजिलियंस का, एक आपका एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी कैसा रहा। एक्सपोर्ट्स में हम लगभग कोई पिछले 5 साल में डबल हो गए। हमारा जो लास्ट वित्त वर्ष में 25-26 में जो एक्सपोर्ट हुआ टोटल, वो $860 बिलियन, एक बहुत बड़े जो नंबर है, हिस्टोरिक नंबर है, तो जो हमने अचीव किया। तीसरा जो रेजिलियंस का कारण है कि हमने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स, अवर इन्फ्लेशन इज स्टिल इन द टॉलरेंस बैंड ऑफ आरबीआई, तीसरा कारण। चौथा जो कारण है, हमने फिस्कल डेफिसिट को अच्छे से एड्रेस किया। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही बेनाइन ट्रैजेक्टरी में है, तो उसको हम कितना ऊपर से जब कोरोना के टाइम से अब तक हम लेकर आए। और जो पांचवा कारण मैं ये कहूँगा, हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो हमारी ओवरऑल रेजिलियंस को और सपोर्ट करती है। जब कितने भी जो भी संकट रहे ग्लोबल लेवल पे, बहुत सारी इकोनॉमीज प्री कोविड लेवल से भी नीचे हैं, जो उनके कोविड के पहले के ग्रोथ रेट थे उनसे भी नीचे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो, जो हमारा अगर कोविड के पहले का 5 साल का एवरेज देखेंगे, तो हमारी अभी के बाद के 5 साल की एवरेज इज मच मच हायर देन अवर प्रीवियस एवरेज। सो दैट्स वाई जो रेजिलियंस है हमारी वो एकदम से, जिसको हम कहेंगे, कायम है एकदम से जी।
2: In more news, India and Vietnam today agreed to elevate their relationship to an enhanced comprehensive strategic partnership, marking a significant step forward in bilateral ties. They've also inked several MOUs in the fields of digital technology, rare earths, medical products regulation, public sector audit, digital payment system and culture and tourism. The agreements were signed after the talks between Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam in New Delhi this afternoon. During the talks, both leaders held wide-ranging discussions across a spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Narendra Modi said that to boost financial connectivity, today both sides have decided to enhance cooperation between the central banks. Prime Minister said India's UPI and Vietnam's fast payment system are also going to be linked soon. He added, with Vietnam's cooperation, India will also broaden its relations with ASEAN.
3: भारत और वियतनाम का bilateral trade पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत

0: 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 3.3% बढ़कर 2,52,436 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए।
1: आपके पास टाइम कम है, नहीं तो आप गोल्ड के ऊपर व्यू जरूर लेते थे।
0: जरूर जरूर, समय की बात है। आगे बढ़ते हैं।
2: Let's have a look at the closing headlines. Benchmark domestic stock market indices rise over 1%. Sensex gains over 900 points. Nifty settles above 24,300. India and Vietnam elevate ties to enhance comprehensive strategic partnership. Several MOUs inked in various fields including rare earth and digital technology, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
5: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउंग ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
6: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है,

0: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चुड़ंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर पांच विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिकल काची वीसी के प्रमुख तोल तिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है। इस पार्टी के दो विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई, जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित थे। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत तथा वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच की कमी को कम करके अनुसंधान तथा विकास के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विभिन्न क्षेत्रों में नए विचारों, उत्पादों या प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने बताया है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

0: संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ शेयर्ड बाय अपराजिता नायर।

0: को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विद्युत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपी

0: जी, वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akash.

0: चर्चा का विषय है।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों, तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत

0: यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोध गया कि पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोध गया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
1: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
0: जी,
1: तो थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले 2 साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
0: जी बिल्कुल, भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है? थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाए।
1: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा भेजा, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडियो वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए, भारत ने INS कृपाण उनको भेंट में दिया और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
0: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
2: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमो रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे।

0: और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत ज़रूरत है, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया हैं जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी हैं उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज हैं उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
1: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
1: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटीका है, इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
3: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा, हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर हैं, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद 30 बिलियन डॉलर तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीका में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके, लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए इंडोनेशिया।

0: और वियतनाम उन देशों में से हैं जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो वियतनाम है ना, उसका जीडीपी पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कैम्बोडिया हो। तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है, और उसके देखिए क्या एफटीए है यूरोप के साथ और जापान के साथ, और अब वो सीपीटीपीपी में भी शामिल है। तो वियतनाम एफटीए से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस। और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में, काफी मजबूत है, और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता
1: जी
0: है। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, दवाइयां जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ती है। पहले तो चावल वो अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ती है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है। जो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है, और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब 16 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो 25 बिलियन डॉलर का है। ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
2: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध हैं उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान एफटीए नहीं साइन हुआ था, उसके पहले से ही काफ़ी मजबूत थे। उसकी अपनी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अपने एक अलग पायदान पे चल रहा था। भारत आसियान एफटीए का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीगा से या भारत आसियान एफटीए से बहुत फायदा उठा रहे हैं, और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या ईवी व्हीकल्स हो, वियतनाम ईवी व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे ईवी व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे, तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीगा के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज़्यादा हैं बनस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश आते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा, उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीगा का जो री एवेल्युएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा, और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पे उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
3: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा, और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा

0: कि यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
1: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीज़ों को समझने में और अपनी खरीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना यूपीआई सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है, एक छोटे पैमाने पे जहाँ कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन भारतीय रुपये के मुकाबले भी काफ़ी वो कमज़ोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और ख़ास तौर पर बोधगया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा। और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है, और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफ़ी सुगम होगा और काफ़ी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
0: और आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक, यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
0: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
3: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसॉन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार ही साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसॉन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
0: जी।
3: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहते। यही अगर आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस हैं, वियतजेट और वियतनाम एयरलाइंस, वो भारत बहुत आ रही है। और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट्स भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है, और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है। वियतनाम के छोटे शहरों में भारत के टियर 2 शहरों में जाते हैं। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए। तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करें और बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा, और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
0: प्रोफेसर मिश्रा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
1: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था तब भारत ने हो

0: मिन का साथ दिया। हो ची मिन 1959 में भारत आए और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है। और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है, उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें जिसमें सामरिक तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं और अब इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है, मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है उससे वियतनाम फायदा उठा सके, क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में। चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-लाइन है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं है। वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या है, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटर ऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस है, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को समझें कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी जरूरी है कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को से कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच, चूंकि

0: आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
1: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ MOU में ये शिक्षा का क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए, तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये MOUs में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
0: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
2: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर हैं। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम ITGA के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे FTAs है उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
0: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोधगया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
3: चर्चा का विषय है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
4: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों के

0: और अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप,
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। और खेल में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: The Prime Minister said

0: तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
4: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन तुआन से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरा होने पर स्वागत किया और इसके निरंतर सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया और लचीलेपन और स्थिरता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। श्री तुआन ने भी भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक नेतृत्व की सराहना की और भारत के अनुभव से, विशेष रूप से कर सुधारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और इसे गति देने में सार्वजनिक निवेश के मामले में सीखने में गहरी रुचि व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 30 दिनों की वार्ता अवधि होगी। इस दौरान समुद्री प्रतिबंधों और क्षेत्र में अमरीकी नौसेना की उपस्थिति को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ये बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वार्ता में महान प्रगति का हवाला देते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी नेतृत्व वाले नौसैनिक सुरक्षा मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को स्थगित करने की घोषणा के बाद आया है। 3 दिन पहले शुरू किया गया ये अभियान सामान्य समुद्री

तेहरान गतिविधियों को बहाल करने में विफल रहा और इसकी बजाय ईरान ने नए हमले शुरू कर दिए। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने संघर्ष विराम के बाद से अमेरिकी सैन्य और वाणिज्यिक जहाजों को 19 बार निशाना बनाया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध और नाकाबंदी एक समझौते के साथ समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर ईरान समझौता नहीं करता तो बमबारी तेज हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तय शर्तों को मान लेता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नाकाबंदी से होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान समेत सभी के लिए खुल जाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आज बीजिंग में चीन के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात की। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अराघची ने विदेश मंत्री वांग यी को अमेरिका के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी और कहा कि ईरान किसी भी आक्रामकता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित एक तरफा युद्ध विराम के आधी रात को लागू होने से कुछ घंटे पहले रूस द्वारा यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में किए गए हमलों में 27 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने आरोप लगाया कि रूस शत्रुता रोकने की बजाय हमले तेज कर रहा है। ज़ापोरिज़्या में बम हमलों और उसके बाद शाहिद ड्रोन हमलों में 12 लोग मारे गए। क्रामाटोर्स्क, निप्रो और पोल्टावा क्षेत्र में लोग हताहत हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने और स्थायी शांति की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा किमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और जापान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वाभाविक तालमेल साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अग्रणी क्षेत्रों में नवाचार को गति दे सकते हैं और अनुसंधान को सार्थक सामाजिक परिणामों में परिवर्तित कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल कल से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय शैक्षणिक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए, जबकि अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दोनों देशों की साझा विरासत को संजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबर। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस द्वारा रात भर किए गए हमलों में 27 लोगों की मौत। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और

0: ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $अरबों के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation.

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது திரைக்கானம் ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்ட் 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில். பண்பலைகள் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில். செய்திகள் டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of Vietnam.

0: के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
2: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $अरबों के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैंड्रिक क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोहली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tu Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. President Tu Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tu Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honour of the visiting dignitary. The president said, The elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation, but also contribute to peace and prosperity in the region. She said that India and Vietnam share a deep friendship rooted in historical, civilizational and cultural ties. Meanwhile, Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju also met Minister of Ethnic and Religious Affairs of Vietnam, Nguyen Dinh Khang, at Parliament House in New Delhi yesterday. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has reviewed the progress of the National Maritime Heritage Complex in New Delhi.

பாடுங்கடா.

0: ரகசியமே. கேட்ட பாடலோடு நிறைவேறுகிறது இரவின் மடியில். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें

0: समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. President Draupadi Murmu received her Vietnamese counterpart Tho Lam at Rashtrapati Bhavan last evening. She also hosted a banquet in the honor of the visiting dignitary. The president said the elevation of India-Vietnam ties to an enhanced comprehensive strategic partnership will not only provide momentum to the bilateral cooperation but also contribute to peace and prosperity in the region. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bua in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment,

0: இனிமையான கானங்களை இதுவரை காற்றாலிகளில் இசைத்துச் சென்றது நினைவில் நின்றவை ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில். பண்பலையில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के

0: ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments, and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bouva in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. West Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's personal assistant Chandranath Rath has been shot dead in Dohariya area of Madhyam Gram. Eyewitnesses say bike-borne assailants followed his car and opened fire. Rath was rushed to a nearby hospital where he was declared brought dead. The driver was also injured in the attack. Senior BJP leaders including Shubhendu Adhikari reached the spot. Newly elected Barakpur MLA Kaustubh Bagchi has alleged that the murder was planned by Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government. Union Minister for Port, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal has reviewed the progress of the National Maritime Heritage Complex in New Delhi.

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर

0: उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030 and are looking to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. The joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership between India and Vietnam said, Prime Minister Narendra Modi and President of Vietnam Tho Lam have emphasized the need to further enhance bilateral trade in a balanced and mutually beneficial manner. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bowa in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar expressed confidence that the outcomes of their deliberations will further deepen and diversify India-Suriname ties. In West Bengal, in a shocking incident, Chandranath Rath, a close aide of BJP leader Suvendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram. According to reports, bike-borne attackers opened indiscriminate fire at his car in the Dhoria area. Chandranath was rushed to a local hospital but was declared dead on arrival. His driver, Buddhadev Behra, sustained multiple bullet injuries and has been shifted to a Kolkata hospital in critical condition. According to sources, 8 attackers on 4 motorcycles followed the car and ambushed it. Soon after the incident, several BJP leaders visited the hospital. Meanwhile, BJP leaders have blamed the Trinamool Congress and accused Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee of involvement. The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground. Our correspondent reports preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government.

0: இனிய ராகம் கேட்டோம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அருண் குமார். भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोआ के साथ बातचीत की।

0: வைஷ்ணவி. भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मुद्रा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए. श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की.
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं. अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे. कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया. उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया. श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा. पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है. बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा. वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है. टीवी की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है. 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा. अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है. आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी. मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब है. वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं. प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिबो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बौवा के साथ बातचीत की. इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वावधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की. उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की. आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया. प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकान स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा. मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब.
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू.